0: लपट झपट चल हट बाजू हट नट खट हट जा। मैंने देखा जब तेरी नजरों के थ्रू,
1: कभी 101 कभी 102,
0: उस दिन से हुआ फीवर ये शुरू,
1: कभी 101 कभी 102।
0: जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ,
1: नब्ज दिखाओ मेरा हाल बताओ,
0: जाओ जाओ।

0: माँ को भी समझा दो, बस इतना बता दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर।
1: Yes, I promise you, I'm going to make all of you entertained all over the world, and that's my job, my calling.

0: इसकी चाल तो देखो,
1: अरे रंग लगाया।
0: इसके बाल तो देखो,
1: अरे झूठे मूठे।
0: इसके दांत तो देखो,

0: मालूम किसी से किसी से किसी से छुप कर ये भी मिलता है। मैं नाम बताऊं
1: अरे ना ना ना ना ना जी,
0: तस्वीर बताऊं
1: अरे ना जी ना जी ना जी,
0: कर गया वो कैसे बाजार में ऐसे, शरीफों को हम रुस्वा नहीं करते मियां जुम्मन, तैयबली प्यार का दुश्मन हाय हाय, मेरी जान का दुश्मन हाय

0: गोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: ओह माय,
0: राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: बड़े
1: याद रहे हर याद
0: बड़े लोग यहाँ सच्चा प्यार गरीबों
1: नस्ल की ये बातें जा समझे तो जिसे मेरी दाए जब चाहे
0: चलिया मैं दुनिया में
1: दिल है खाली जिस जब चाहिए रूप महल प्रेम गल
2: प्लीज माय नेम इज फ्रैंकी
3: नो
2: नो
3: नो